आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 106.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ci lascia arruata, quando Marta si è addomeggiata.

आवाज अच्छी ना, बस थोड़ा नमक कम है। और राग में नमक आने के लिए नमकीन जिंदगी जीनी पड़ती है।

0: और नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है जिंदगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआर के।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
3: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिल चिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मन भावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
3: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
3: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियां। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह यह तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात।

0: थे।
1: और श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
2: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थी और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
3: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
0: सू
4: जी,
0: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
4: जी हाँ।
0: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
4: जी डॉक्टर साहब।
0: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
4: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
4: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
4: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
4: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
4: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 9, 6, 5, 4
4: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only 4
4: मेरी तरफ देखो।
5: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
4: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
5: 3 पत्तियां।
4: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
4: हाँ हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है

0: ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
1: सुनो जान से।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा

0: लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ हाँ, मैंने देखा जॉन्सन, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सन, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ, 2 दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
0: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ,
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।

0: मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सो, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सो।
1: हाँ
0: मास्टरपीस,
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम जयपुर के आकाशवाणी केंद्र से देने जाएंगे।

0: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। NTA के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटुदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोडुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से दिन में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये गोल्डन सिटी चैनल है और आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

और उठाए गए भेड़ों करती। गार तो हफ्ते में एक बार होती थी, लेकिन गोणी जो है वो लगभग रोज फेरनी पड़ती थी, क्योंकि अपो जो होना पोचा लगा हुआ तो अपर वो घर साफ सुथरो रही, तो गोणी तू बिकी है पीली मिट्टी न भिजोए, और वे तू रोज एक गोणी नीप दी जामती थी, और उसे साइड में लाल मिनिया मिट्टी तू कोर बनाई जामती थी, ताकि अपर जो है साफ सफाई ध्यान पड़नी चाहिए। यानी तो ऐसा जो दिनचर्या रो अपर हिस्सो तो इन्हें आपो बैठ के काम करता था, तो अपरे पूरे शरीर रो व्यायाम होता तो मेरे बाद महिलाओं कपड़ा भी धोए आती तलाई मथे जाए, और साथ ही साथ पानी रा दो घड़ा भी भर के बेड़ा ले आती, कुछ दो ले आती हूँ, कुछ तीन ले आती हूँ मथे मथे एक हाथ में, है ना। तो बहुत सारो शारीरिक काम होता तो घट्टी भी संदो काम होता तो, और हमें आप देखें कि योग रो जो है वो बहुत बढ़ रहे है। अपर वो योग जो है वो अपर ऋषि मनिया अपर दैनिक दिनचर्या में उन्हों शामिल कर दियो तो देखो उमें घट्टी आसन भी हुए, बिलौने रोज को है वो भी अपर हुए में एक आसन है। तो ऐसा सब काम जो है अपरी महिलाओं खुद करती थी, पुरुष खेत में काम करता था तो उमरों भी हाथों पगड़ो और सुबह सुबह तोड़न जानो पच्छो लाणो, तो हमारो शारीरिक व्यायाम भी हुए सु हो जाओ। तो तुम्हारे बाद नहाए धोए अपो जो है पाठ करना बैठता था, तो वे सु की होती ध्यान मुद्रा होती अपोरे ओम नमः शिवाय रो कुछ लोग जाप करता था, कुछ ओम नमो भगवते रो जाप करता था। तो ऐसा चीजों जो है वे सु अपो देखें कि अपोरे घर में भी जो है वो सकारात्मक माहौल रहे, वो बहुत ही बढ़िया रहे अपने वास्ते। तो देखो आजकल जी के चीज रास्ते अपन बाहर जाना पड़ी क्लास तो लेनी पड़ी, लेकिन वो सब चीज़ों अपरी भारतीय संस्कृति रे जीवन रो ही हिस्सों तो। तो बहनों अपन चाहिए कि अपन अपरी जो को पुरानी जीवन शैली है वह ना देखो अपन पूरी तो को नहीं अपनाए सको, लेकिन जितो हो सके अपन नए तरीके से जो आजकल देखो योगा रे वास्ते केंद्र है अपो चाहे कि सीख लो, सीख के तो सुबह अल सुबह उठ के घर करो छत मत है, या बाहर जा सके तो कोई बागीचे और में जाए कि सुबह सुबह करो ठंडी हवा में, तो वह तो बहुत ही देखो है सुकून मिले, क्योंकि घर तो अपो दिन भर बैठा रहो है, लेकिन सुबह रो अल सुबह रो जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ खुद रह वास्ते होना चाहिए, और थोड़ो प्रयास तो खुद रहे शरीर वास्ते भी करना चाहिए, क्योंकि बहनों कहो भी जावे कि पहलो सुख निरोगी काया। तो अगर अपो बहनों रही जो है काया निरोगी रहस है तो अपो पूरे घर परिवार को भी ध्यान रख पासो। तो बहनों चर्चा तो लंबी चलती जा सके, क्योंकि यह तो अपरू प्रिय काम भी है कि एक दूसरे से बातचीत करना, तो मन तो आपकी बात रखनी है, लेकिन जो है हमेशा अगर अपो बातचीत करता रहो और मेरे साथ में अगर संगीत हुए तो बातचीत रो मजो जो है वो और भी दुगुण हो जावे। तो बहनों ले आलो गीत संगीत की दुनिया में ये प्यारे से लोकगीत के साथ।

0: गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
6: बदलो बदलो आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
6: बदलो बदलो आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बहनों हमें जो है अपर गांव गुवाड़ी बहनों है वो भी आप रे हाथ रे उन्हें और अधिक निखार रही है और निखारन में सरकार भी मोरु पूरु सहयोग करे वनो मेरे वास्ते अच्छा जो है प्रशिक्षक भी दे रही और मेरे वास्ते वे नो आपरी कला नो और अधिक निखारे और निखारन रे बाद वे कार्य में पारंगत भी बने और आपरी दूसरी बहनों नो भी आप सु जोड़े और वे सु आपरे घर परिवार रू भरण पोषण करे। जी हाँ, घर परिवार रू भरण पोषण मतलब आर्थिक दृष्टि से भी आपरा घर परिवार नो मजबूत बनावे ये रिवाज जो है अपर गांव गुआड में मोय भी जो है कार्यक्रम चलायो जावे और ये मतलब अपर खुद रोज को विशेष कार्यक्रम है अन्नपूर्णा ओ सुनवा सौ में थोनो जिके रे मोय तृप्ति भाटिया जी को है ग्राम संगठन डेला सरी अध्यक्ष राधा कंवर सु खास बातचीत करी है तो हमें वे न सुन सो और आप रदी कौम न और अधिक को कर निखार सको और वो सु को कर जुड़ सको ये भी जानकारी ले सो।
9: आकाशवाणी के इस अन्नपूर्णा कार्यक्रम में इस बार फिर हम हाजिर है अपनी लेकर एक सखी को जिनसे हम करेंगे बात और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी ताकि वो दे सके हमको प्रेरणा और बढ़ा सके हमारे सखियों के बीच आत्मविश्वास। नमस्कार, आपका नाम है राधा जी, आप डेला सर से हैं?
10: जी हाँ
9: जी। राधा जी अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइए कि भाई आपने कैसे ये जो यात्रा स्टार्ट की और आजीविका से कैसे आपका परिचय हुआ?
10: हाँ, आजीविका में मैं 2020 से जुड़ी हुई थी
9: जी।
10: हाँ, पहले पहले मुझे बहुत मुसीबत आई थी आजीविका जुड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैंने हार नहीं मानी, धीरे आज मेरी राजिका में बहुत मतलब अच्छी पोस्ट पर हूँ मैं
9: जी।
10: हाँ आज मेरी बहुत अच्छी चल रही है, घर का कारोबार भी अच्छा चल रहा है।
9: तो अभी राजिका में जो आपका ओहदा है ना, जो आपका पोस्ट है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
10: हाँ आज मैं सिलप का अध्यक्ष हूँ।
9: अच्छा।
10: हाँ मैं सिलप का अध्यक्ष हूँ, तो सिलप में मेरे कुल मिला के 20-25 समूह जुड़े हुए हैं
9: जी,
10: उसमें मैं काम कर रही हूँ।
9: आपसे 20-25 समूह जुड़े हैं, इसमें हाँ। अध्यक्ष का मेनली क्या काम होता है?
10: यही काम है महिला को मतलब समझाना के घर महिला मतलब अपनी खुद की पैरों पर खड़े हुए बाहर निकलो, अपना खुद का कार्य करो
9: जी।
10: महिला किसी से कम नहीं, महिला मतलब पुरुष से महिला कम नहीं है
9: जी। तो अभी आपको 6 साल हो जाएंगे 2020 से, अभी तो 26 चल रहे हैं,
10: 6 साल हो जाएंगे।
9: इन 6 सालों में आप जब एक पुरानी वाली राधा को देखती हैं जो कि ऐसा कुछ काम नहीं करती थी, और एक आप अभी खुद को देखते हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व में भी कुछ परिवर्तन नजर आए होंगे?
10: हाँ बहुत परिवर्तन। पहले पहले मैं बाहर जाने में बहुत डरती थी, मैं अकेली बाहर जाती नहीं थी, मुझे डर लग रहा था लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करती, लोग चाहे कुछ भी सोचे कुछ भी कहे, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। लोग तो हमको पीछे ही खींचने की कोशिश, आगे तो बढ़ने नहीं देंगे लोग,
9: नहीं देंगे।
10: हाँ तो मैं अब मेरे पैरों पर खड़ी खुद हो गई हूँ, अब मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ।
9: और पहले आपको घबराहट होती थी?
10: हाँ पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी, मैं बाहर जाने के लिए लोग क्या कहेंगे, मैं खुद घबराती थी, वहां पर जाके मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं कैसे मतलब बोलने महिला बीच में कैसे बोलूंगी, अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती।
9: तो सबसे पहले किसने आपको इसके बारे में बताया कि आइए इससे जुड़ी है?
10: सबसे पहले मेरे झुंझुन से बाहर टीम आई थी, उन्होंने समूह बना के गई थी 2020 में।
9: अच्छा।
10: हाँ पहले पहले वो आई थी बाहर से, वो टीम बना के गई थी
9: जी। और जैसलमेर में आप आते रहते होंगे इस कार्यक्रम?
10: जैसलमेर में जो कोई कार्यक्रम होता है उसमें आती रहती हूँ, महीने में एक दो चक्कर तो मेरा होता ही है जैसलमेर में।
9: आप अकेले आती हैं?
10: हाँ मैं अकेले आती हूँ।
9: शुरुआत में आप किसी को लेके आती थी?
10: हाँ शुरुआत में हस्बैंड को साथ लेके आती हूँ, अकेले आने में संकोच लग रहा था।
9: अच्छा।
10: मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे ऐसा लग रहा था, अब तो मैं अकेली आ सकती हूँ, किसी के साथ की जरूरत नहीं। अब मैं जयपुर भी अकेली जा सकती हूँ, मैंने उधम सखी की ट्रेनिंग की थी जयपुर में, 2 बार जाके आई हूँ। अब थोड़ा दिन में मैं और दिल्ली जाऊंगी ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए।
9: जी वाह वाह क्या बात।
10: अभी मुझे किसी बात का डर नहीं, अब मैं कहीं भी अकेली जा सकती हूँ, किसी के साथ की जरूरत नहीं।
9: और घर वाले भी अब नहीं डरते कि भाई इसको अकेले कैसे भेजें?
10: नहीं नहीं अब घर वाले भी नहीं डरते, पहले बोलते थे अकेले नहीं जा सकते, वो लोग कैसे हैं, देश कैसा है, कहाँ क्या कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, अब कोई मेरी परवाह नहीं करता, बस अब वो समझ गए कि अब खुद अपना का ध्यान रख सकती है।
9: तो मुझे लगता है आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है।
10: हाँ।
9: कि जब वो सशक्त माँ को देखते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
10: हाँ बच्चे बहुत खुश होते हैं।
9: और आर्थिक रूप से भी आपको लाभ हुआ होगा?
10: हाँ बहुत लाभ हुआ आर्थिक रूप से मुझे
9: जी। तो राधा जी ये बताइए कि आपका काम या आपका इंटरेस्ट क्या है? जैसे राजीविका से बहुत सारे काम काज होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस काम में है?
10: मैं राज्य का मेरा यही इंटरेस्ट है कि आगे से आगे बढ़ू, मैं जो भी पोस्ट होती है उसमें मैं सोचती हूँ पहला नंबर मेरा आए।
9: वाह क्या बात है। नहीं हाँ। जैसे स्टॉल्स लगती है तो कोई बाजरे की बिस्किट बनाते हैं, कोई सिलाई वाले करते हैं काम, तो आपको किस क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी रही?
10: मेरे मतलब सिलाई वाले में ज्यादा है।
9: अच्छा।
10: हाँ ये मेरे सिलाई वाले मशीन का फॉर्म भी भरा हुआ है, जब भी मशीन आएंगी तो मैं ये काम जरूर करूंगी।
9: तो और आपके समूह में जैसे इसमें समूह बनता है आपने बताया, हाँ। तो समूह में और भी महिलाएं होती है, तो हाँ। आपके समूह का नाम क्या है और उसमें कितनी महिलाएं हैं?
10: हाँ मेरे समूह का नाम बोम बना है, मेरे समूह में 10 महिलाएं हैं।
9: अच्छा। तो वो सब आपके जान पहचान के रिलेशन?
10: नहीं नहीं मेरे रिलेशन में ही है वो सब।
9: तो आप उनको भी साथ लेके बढ़ रही होंगी?
10: हाँ,
9: तो बाहर जाती
10: हैं। हाँ मेरे 10 महिला वो मेरे साथ ही है।
9: अच्छा। हाँ। उनको भी आप बाहर लेके जाते हैं जैसलमेर?
10: हाँ, मैं बाहर आज जैसलमेर में बहुत बार उनको लेके आती हूँ
9: जी।
10: एक बार मैं जयपुर भी जो मोदी वाला कार्यक्रम था उसमें मैं लेके गई थी साथ में।
9: जैसलमेर से आप गए थे?
10: हाँ जैसलमेर से मैं गई थी, मैं साथ लेके गई थी महिलाओं को।
9: और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगती है मरु मेले पे या अलग ऐसे मेलों पे, तो आपको भी कई बार मेलों में देखा गया है?
10: हाँ मैं मेलों में आई थी लेकिन मैंने उस मेले में अभी तक भाग नहीं लिया है।
9: अच्छा।
10: हाँ महिला ने भाग लिया है, कोई बिस्कुट बना रहे, बाजरे, कोई देसी घी के और जो भी मूर्तियां वगैरह सब बना रहे, वो का भाग ले रहे, मैंने अभी तक उसमें भाग नहीं लिया है।
9: तो ये जो मेले लगते हैं इनमें हाँ। जैसे आपका गाँव है तो हाँ। आपके गाँव में ऐसे कुल कितने समूह है जिनके लोग एक्टिव हो जाते हैं?
10: मेरे गांव गांव में 20 समूह बने हुए हैं।
8: आपके एक गांव में 20 समूह हैं?
10: हाँ, 20 समूह बने हुए मेरे डेला सर डेला सर में।
8: और एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं हैं?
10: 10 महिलाएं हाँ।
8: तो आप सोचिए कितनी सारी महिलाएं, तो 20 समूह और 10 महिलाएं, तो 200 महिलाएं, तो आप सीधे देख लीजिए कम से कम।
10: हाँ, कम से कम 200 महिला थे।
8: तो आपके डेला सर का तो बिल्कुल एक कलेवर बदल गया होगा।
10: हाँ,
8: जो महिलाएं
10: 10 समूह तो मेरा बहुत एक्टिव है, दस में मतलब 10 समूह धीरे धीरे एक्टिव हो रहे। महिला थोड़े बहुत संकोच कर रही थी कि मैं के, अब मुझे दे के महिला, अब उनको भी हिम्मत आ गई, ये जा रही हम क्यों नहीं जा सकते।
8: और पहले लोग ऐसे बोलते होंगे,
10: पहले वो बोलते
8: ये कर सकती है भैया, हमारे बस का नहीं है।
10: हाँ, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं जाए, हमारे घर वाले हमें भेजते नहीं है, मतलब ऐसी कोई मुसीबत आ रही। अब वो धीरे धीरे लोग जो उनके हस्बैंड है वो भी मुझे दे के बोल रहे, तो ये कर सकते फिर आप क्यों नहीं कर सकते।
8: वाह,
10: हाँ ये भी एक महिला ही है।
8: जी जी जी।
10: हाँ, तो अब धीरे धीरे मेरे 10 वाले, अब धीरे धीरे पीछे वाले जो समूह बचे वो भी एक्टिव हो रहे हैं।
8: सही बात है। हाँ। क्योंकि ऐसा करके वो प्रेरणा तो देते हैं।
10: उस समूह में भी मेरे 2-3 महिलाएं जो कृषि सखी और पशु सखी में जुड़ी हुई है, उनके भी मंथ के मतलब 2300-2400-2500 रुपए मंथ के आ रहे हैं।
8: कितनी अच्छी बात है कि तो रोजगार। हाँ,
10: 3 महिलाएं मतलब बाहर भेजा था, पहले भेजा तो उन्होंने, उनके हस्बैंड बोल रहे थे हमारी वाली नहीं जाएंगी। मैंने कहा मैं आपको विश्वास देती हूँ, आप एक बार बाहर भेजो उनको। 3 महिला वो भी मतलब आ रही है, जिसमें आ रही ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, कृषि सखी, 2 कृषि सखी और 2 पशु सखी, 4 महिलाएं उसमें भाग जुड़ी हुई है।
8: और आपका विश्वास रंग लाया।
10: हाँ, मेरा विश्वास रंग लाया। अब वो पीछे वाली महिला बोल रही, दीदी आप ना जा रहे हो, हमें भी किसी काम में आगे बढ़ाओ, जोड़ो, कोई काम है तो मेरे बस का काम है तो हमें भी उस काम में मतलब जोड़ो के।
8: मतलब एक जमाना था जब आपको बुलाना पड़ता था और लोग आते नहीं थे।
10: आते नहीं
8: आज
10: थे।
8: जमाना के लोग आपको फोन करते कि हमको लेके जाओ।
10: हाँ जी, वाह
8: बताइए। तो आपने एक लगता है पूरा परिदृश्य ही आपने बदल दिया है ना, कि एक कहते हैं ना कि एक इंसान से क्या होता है,
10: एक इंसान तो करना चाहता है तो सब कुछ कर सकता है,
8: सब कुछ कर सकता है। आप भी एक इंसान है और आपने एक इंसान अकेले भी इतने लोगों को जो मोटिवेट किया है।
10: मेरे तो घर के भी लोग मुझे बाहर जाने के लिए टोक रहे थे, आज से 4 साल पहले बहुत टोक रहे थे, आज देखे तो सब बोल रहे बस जाओ अपना काम करो, घर पर कुछ नहीं है।
8: देख लीजिए, क्योंकि घर तो हम संभालते ही है,
10: घर संभालते साथ में बाहर का भी काम कर सकते हैं।
8: और कभी भी क्या ये सोचा जाता है कि जो महिला घर से बाहर जाएगी तो घर बिगड़ जाएगा।
10: हाँ,
8: लेकिन महिला के दिमाग में घर रहता है।
10: हमारे घर मेरे हस्बैंड की खुद की सोच ये थी।
8: जी
10: हाँ, ये सोचती कि नहीं बाहर महिला ऐसे ऐसे हो जाएंगी, फिर कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, महिला कहीं कहाँ चली जाएगी, खुद हस्बैंड की सोच थी। और आज वो खुद हस्बैंड हमें फोर्स करते आप बाहर जाओ, और दूसरे वाली महिला को भी बोल रहे कि मेरी वाली जा रही आप क्यों नहीं जा रहे।
8: देख लीजिए कितना ज्यादा चीजें बदल जाती है, क्योंकि ये समझना ना पुरुषों को और घर के बड़े बुजुर्गों को आवश्यक है कि जब एक महिला घर से बाहर जाती है तो भी उसके दिमाग में
10: और मेरा
8: घर हमेशा रहता है।
10: 27 में सभी महिला को मैं एक्टिव करके रखूंगी।
8: जी, क्योंकि हमारे दिमाग से अपना घर कभी भी नहीं जाता। हम घर को भूलते थोड़ी हैं।
10: घर को नहीं भूलते,
8: भूलते भूल ही नहीं सकते, अपना घर तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है।
10: हाँ, वो तो भगवान का मंदिर है,
8: वो तो अपना घर एक मंदिर है। तो हम ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करते हैं कि अपनो अपने घर को बिगाड़ के बाहर जाएं, है ना। हम उस घर को और भी ज्यादा सजाने और सवारने के लिए बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, हमने मानव जन्म लिया है तो हम अपने जो मानवोचित गुण है उनका विकास कर रहे हैं।
10: हाँ।
8: ताकि हम समाज का भला कर सके। अभी जब महिलाएं अकेले पुरुष कमाते हैं और एक महिला भी साथ में कमाती है तो जरूर परिवार के जीवन स्तर में बदलाव आता है।
10: बदलाव बहुत आया मेरे जीवन में, बहुत बदलाव आया है।
8: पति पे अकेले लोड नहीं पड़ता, नहीं तो कभी कभी वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती है, ख्वाहिशें होती है।
10: हाँ।
8: और महिला कम से कम अपना तो खर्चा खुद उठा लेती है तो पुरुष का आधा भार कम हो जाता है,
10: आराम कम हो जाता है।
8: जी, तो ऐसी कोई घटना बताइए आपके जीवन की, क्योंकि आपसे हमने पहले भी बात की थी और अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो उतने समय में भी आपके तो बिल्कुल ही सुर ताल सब बदल गए, आप तो अलग ही हो गए हो। तो हाँ। मुझे लगता है आपके पास और भी कोई ऐसी अच्छी घटना होगी जो आपके जीवन में घटी होगी तो आपको लगा होगा कि देखो मैंने क्या कर दिया। किसी ने कुछ आपको कुछ कहा हो, अप्रिशिएट किसी ने किया हो?
10: हाँ, मैंने मेरे मतलब जो पड़ोसी में जो रहते थे वो लोग बोल रहे थे पहले, ये महिला हाँ ये बाहर जा रही है, ये क्या करेगी, अब बाहर जाके ये फिर क्या करेगी, घर के घर संभालती नहीं, बच्चों को संभालती नहीं है, कल ये सब घर वाले फिर पछताएंगे, आज तो ये बाहर भेज रहे, वही लोग आज बोल रहे हैं उनके घर वाले महिलाओं को बोल रहे हैं आप भी बाहर जाओ और ये काम करोगे, जो लोग बुराई कर रहे थे वही लोग आज मतलब वो पछता रहे हैं।
9: और देखो लोग क्या बोलते हैं कि गांव में रहकर आप क्या कर लोगे, हम तो छोटे से गांव के हैं। लेकिन गांव में रहकर काम जो करने वाला इंसान होता है तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव में हो शहर में हो,
10: शहर में वो फर्क नहीं पड़ता है,
9: नहीं करना होता है, वो बड़ी सिटी में भी कुछ नहीं करते और जिन्हें करना होता है उनके लिए गांव और शहर मायने नहीं
10: रखते, कर सकते हैं
9: कहीं भी रहकर कर सकते हैं, बस ये करना है कि अपनी मेहनत करनी है और अपनी ईमानदारी करनी है,
10: विश्वास रखना है बस।
9: हाँ
10: पहला यही कदम है, खुद पर विश्वास रखो, वो सोच लेती कि मुझे करना है बस करना है, लोग चाहे कुछ भी सोचे।
9: और आप तो पढ़े लिखे भी हैं, क्या आपके समूह में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है फिर भी काम कर रही हैं?
10: एक महिला जो जो कशिशा की बनी हुई है वो बहुत अंगूठा छाप है, बिल्कुल साइन भी मैंने उन बाद में सिखाया है।
9: अच्छा
10: हाँ अनपढ़ थी वो,
9: तो उसको फिर काम काज करने में परेशानी आती होगी, आपने कर लिया?
10: नहीं नहीं अभी परेशानी आ रही, फिर भी वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रही जा रही, तो उनको वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, अब उठना बैठना कैसे, लोगों को बोलना मतलब बैठना कैसे जाना, वो धीरे धीरे सीख रही है।
9: और कुछ कम पढ़ी लिखी भी महिलाएं होंगी?
10: हाँ कम, बिल्कुल अनपढ़ी महिलाएं हैं हमारे समूह में।
9: पर ये भी बात बताने वाली है क्योंकि आपको देख के कुछ लोग ये बोलते होंगे भाई ये तो पढ़ी लिखी है तो ये कर सकती है, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए भी संकेत है कि कम पढ़ा लिखा क्या बिल्कुल भी जो अनपढ़ है वो भी आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं,
10: प्रयास कर रहे हैं, वही मैं महिला को वो भी समझा रही, मेरे महिला समूह वाली तो एक्टिव है, महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी एक्टिव है, वो बोल रही कुछ ऐसा आप दीदी कार्य करो जो हम भी कर सकते, जैसे खींचा पापड़ जो भी बढ़िया वगैरह है हम भी कर सकते हैं,
9: और ये वो काम है जो हम अपने घर पे ऐसे ही करते हैं।
10: हाँ ऐसे ही करते हैं वो तो काम,
9: बल्कि हमारे हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो ये होता है कि जैसे कोई इंसान खींची अच्छे बना रहा है तो वो अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको ऐसे ही भेज देते हैं कि हमारे हाथ के अच्छे हैं तुम ले लो तुम ले लो, या लोग उनसे मंगवा के बनवा लेते हैं। तो जब आप किसी कला में पारंगत है तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको उसका मूल्य भी साथ में मिल जाए।
10: वो तो सही,
9: कि कई महिलाएं आजकल देखिए वर्किंग होती है ना, उनको चाहिए घर की शुद्ध चीज खाने के लिए,
10: बस
9: पर उनके पास बनाने का टाइम नहीं है,
10: बनाने का टाइम,
9: तो हम घर पे बैठे बैठे ये चीजें उन्हें उपलब्ध भी करवा सकते हैं।
10: हमारा रोजगार चल सकता है और उन महिलाओं की पूर्ति
9: हो सकती है। तो अभी आप जैसे आप अपने ढीलासर गाँव से हैं, तो ऐसे बहुत सारे जैसलमेर में गाँव है जिनके अपने अपने समूह है ना?
10: जो सिंध में जुड़े हुए बहुत समूह है, चांदन है, सोडा कोर है, दाईसर है, बहुत गांव जुड़े हुए।
9: तो आप जब सिलफ की मीटिंग वगैरह में जाते होंगे तो आपको और भी ऐसे लोगों की महिलाएं मिलती हैं?
10: हाँ बहुत महिला कहती हूँ मैं, बहुत महिला मिलती ग्राम संगठन के सिलफ की महिलाएं,
9: तो उनको भी आपकी उनसे किसी से दोस्ती या बातचीत होती होगी उनके गाँव में क्या हो रहा है?
10: हाँ बात हो रही है,
9: तो इससे क्या होता है एक से
10: बोल रही थी, मतलब पिछली बार जो हमारी हुई थी मीटिंग उसमें महिलाएं बोल रही थी कि हमें साबुन बनाने सीख रहे, कोई बोलो महिलाएं बोल रही थी हमें अगरबत्ती का काम सीखना है। हाँ ऐसे बोल रही थी वो, सर के पास है आप टीम बुलाओ एक बार तो हमें सिखा दो अगरबत्ती बनाना, कोई महिला बोल रही थी हमें साबुन बनाना सिखा दो हम हमारा काम शुरू कर सकते।
9: तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप दूसरे, एक तो आप अपने घर से बाहर निकले अपने लिए, दूसरा आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपके जैसे लोग अलग अलग गांवों से आ रहे हैं,
10: अलग
9: तो अब
10: अलग
9: क्या होता है आपने अपना ज्ञान उनको दिया और उनका ज्ञान आपने लिया,
10: मैंने
9: तो उससे आदान प्रदान हो जाता है और आप उन्हें अपनी बातें बताते हो कि मैं तो ड्रोन सीखने जा रही हूँ ड्रोन उड़ाना सीखूंगी, तो वो लोग भी आपको अपनी बातें बताते हैं कि हम फलाने मेले में जा रहे हैं हम जयपुर में जा रहे हैं, तो एक आपका मुझे लगता है एक अच्छा एक दोस्ती वाला सर्कल भी बहुत बड़ा हो गया होगा।
10: और मेरे समूह में एक और चांदन से महिला मतलब प्रजापत है वो, मतलब ये महिला जो मेला लग रहा है उसमें वो मूर्ति बना के लेके आती है, उनका बहुत काम आता है, जयपुर भी गई थी बीकानेर भी गई थी।
9: बढ़िया बात है, तो उनसे आपको ये पता चलता है कि आप जब अपने गांव में वापस आते होंगे तो आप दूसरे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप जैसलमेर में आते हैं मीटिंग के लिए वैसे आपके गांव में भी मीटिंग होती होंगी?
10: हाँ मीटिंग होती है मतलब बहुत कम है मतलब फिर भी होती है कभी कभी।
9: तो वही तो जब आपके जैसे दूसरे समूह हैं उनकी महिलाओं से आपकी मीटिंग होती होगी तो हम लोग ये चर्चा करते होंगे कि उस गांव में ये काम हो रहा है उस गांव में ये काम हो रहा है, नहीं कहां एक महिलाएं जो चौकी पे ऐसे ही बैठ के एक दूसरे की घर की बातें करती थी, है ना, किसकी बहू कैसी, किसके घर में क्या हो रहा है। आज वही महिलाएं ये बात कर रही हैं कि फलाने गांव में वो लोग ये सीख रहे हैं, उनके यहाँ ये ट्रेनिंग हुई है, हमारे गांव में ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि महिलाओं में कितनी शक्ति है, बस अगर वो सही सोच रखे, अपनी सही दिशा में जाए,
10: सही दिशा में और सही सोच,
9: सब कुछ ठीक हो जाए,
10: सब ठीक हो जाए।
9: बिल्कुल बिल्कुल, हमको ऐसे ही सोचते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़े, दूसरों को प्रेरणा दे। तो भाई जो हमारे शहर की महिलाएं हैं और वो ये सोचती हैं कि जैसलमेर एक बहुत छोटी जगह है, अब यहाँ रह के क्या कर सकते हैं, तो आप उन्हें कुछ संदेश दीजिए कि आप गांव से निकल के बाहर आई हैं तो शहर वाले क्यों ये सोचते हैं कि हम क्या करें।
10: नहीं, शहर वाले तो सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा वो तो और कोई काम करने की, गाँव वाले भी कर सकते हैं, तो शहर वाले क्यों नहीं कर सकते।
9: जैसलमेर में तो फिर भी गांव से ज्यादा फैसिलिटी है।
10: हाँ, बहुत देर नहीं, हर कोई चीज वगैरह सब वहाँ पर मिल जाती है, हमें तो फिर भी बाहर जाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है।
9: आपके गांव में सब चीजें नहीं मिलती?
10: नहीं नहीं, सब चीजें से नहीं मिलती हमें, या तो पोखरण जाना पड़ता है या चांदन लाठी जाना पड़ता है, सब चीज नहीं मिलती।
9: क्या चीज है, मतलब किराने की या खान पान के कपड़ों की, क्या चीज नहीं मिलती?
10: ठीक ठीक तो मतलब मिल जाते हैं, खान पान कपड़े वगैरह सब, मतलब और मतलब लेना पड़ता है बहुत, तो फिर पोखरण जाना पड़ता है या फिर जैसलमेर।
9: अच्छा, कपड़े लगते हैं, खाने पीने की चीजें?
10: हाँ।
9: अच्छा, तो देखिए आप लोग के लिए कितना, इतना आसान नहीं है, यहाँ तो फिर भी घर से बाहर निकलते सब मिल जाता है।
10: हाँ, घर से बाहर निकलते तब सब मिल जाता है।
9: आपके हमें स्कूल्स वगैरह हैं, सब पढ़ाई लिखाई?
10: हाँ, स्कूल वगैरह दो प्राइवेट है, सरकार भी, लड़कियों की अलग है और लड़कों की अलग है, स्कूल वगैरह सब है।
9: कितनी क्लास तक की है?
10: बारहवीं तक की है।
9: बारहवीं तक की, तो अच्छी बात है। अब जो पौध निकलेगी ना, अब जो महिलाएं बच्चियां निकलेंगी तो वो ट्वेल्थ करी भी होंगी मिनिमम।
10: हाँ, ट्वेल्थ,
9: उनको और भी ज्यादा सही गलत की पढ़ाई लिखाई की उन्हें ज्यादा समझ होगी, वो और भी कामों को बेहतर समझेंगी। हाँ। और अपनी माँ के काम में भी अच्छे से हाथ बटाएंगी।
10: हाँ।
9: जी, तो आपसे बात करके वाकई में अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा आप जब भी हमसे कार्यक्रम में जुड़ती हैं, आपके अंदर जो उत्साह है, जो आशा है, साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास है, जो सबसे बड़ी चीज है, कुछ है कुछ नहीं है लेकिन आत्मविश्वास है ना, वो इंसान को ऐसा दिखाता है कि सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं।

0: बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी, तो ये भी
0: हाँ
1: अच्छी बात है कि आप अगर काम शुरू करना चाहें।
0: राधिका में ये भी है, मतलब पर्सनल लोन भी ले सकते और जो ऐसा समूह है समूह थ्रू भी ले सकते। हाँ
1: अच्छा, समूह के थ्रू में तो फिर सब लोग अपना अपना, मतलब सब
0: सब लोग,
1: मिलके
0: हाँ
1: करेंगे।
0: हाँ सब लोग मिलके करेंगे, और जो पर्सनल लेना था वो खुद अपना ले सकती है, दो ही नहीं है राधिका में, ले सकते वो भी दोनों,
1: तो पर्सनल किस लिए, जैसे समूह से जुड़ के उसने कोई काम सीखा
0: मतलब
1: है।
0: हाँ काम सीखा है या कुछ वो करना चाहती है कि मैं तुम, एक बार उदाहरण दे देती हूँ, वो चाहती है कि मैं घर पर दुकान खोलना चाहती है किराना
1: ठीक है
0: की,
1: ठीक
0: तो फिर
1: है,
0: वो बोल देती बैंक वाले मुझे किराना की दुकान खोलनी इसलिए मुझे जरूरत है, मुझे मतलब नारी शक्ति वाला वो पर्सनल लोन चाहिए।
1: अच्छा तो
0: हाँ
1: ये
0: तो वो
1: आसानी से
0: नहीं
1: मिल जाता है या कुछ समस्या होती
0: नहीं
1: है।
0: ये आसानी से मिल जाता है ये तो। हाँ
1: अच्छा, तो अगर जुड़ जाए तो रोजगार के लिए आपको लगता है पूंजी कौन देगा, तो वो भी आपको सरकार दे रही है।
0: हाँ वो भी हमें सरकार देगी, हम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते।
1: और ये कितनी राशि देती है लोन की, मिनिमम और मैक्सिमम।
0: ये पहले तो मतलब लाख रुपए देती है, फिर भी वो एक बार मतलब लाख रुपए दे देती है, फिर 10 लाख तक वो सरकार दे सकती है हमें। हाँ
1: ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक रोजगार छोटा सा शुरू करने के लिए
0: छोटा शुरू
1: लाख
0: करने के
1: रुपए
0: लिए
1: तो
0: लाख
1: ठीक
0: तक
1: है एक
0: तो होती
1: बार,
0: है और 10 लाख तक तो दे सकती है,
1: वो आपके काम के तरीके पे निर्भर है ना, कितना
0: और
1: जल्दी लोन
0: काम
1: चुकाते हो।
0: के तरीके पर निर्भर है। यहाँ
1: पर इस पे फिर ब्याज पे, ब्याज लगता है इस लोन पे
0: क्या काम 50 पैसे
1: बहुत, जे तो बहुत कम है ना,
0: कम है, बहुत कम।
1: मार्केट रेट से तो बहुत कम है।
0: हाँ
1: तो भाई
0: बहुत
1: सुविधाएं तो पूरी मिल रही हैं,
0: कम
1: ट्रेनिंगें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं सरकार के द्वारा, और साथ साथ समूह बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई इंसान एक बार, है ना, घर में हारी बीमारी चलती रहती है तो एक इंसान कभी नहीं हो तो बाकी समूह वाले उसके काम को आगे बढ़ाएं, है
0: आगे बढ़ाए।
1: ना। समूह भावना का विकास होता है, प्रेम का विकास होता है, और कुल मिला के आप अपने घर को, अपने परिवार के, अपने जीवन स्तर को हाइट्स पे ले जाते हैं।
0: मेन यही है हमारा टारगेट,
1: जी, और अगर नारी आगे बढ़ेगी ना तो परिवार जरूर आगे बढ़ेगा, है ना।
0: बढ़ेगा
1: परिवार आगे बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, गांव सारे गांव आगे बढ़ेंगे तो हमारे शहर का विकास होगा,
0: का विकास होगा, शहर का होगा तो हमारे देश का होगा।
1: देश का होगा विकास। बिल्कुल सही कहा, विचार आपके बहुत ऊंचे, बहुत उन्नत है। तो आप हालांकि कभी नहीं सोचते, पर फिर भी हम आकाशवाणी के मन से ये कहना चाहते हैं कि आप मन में क्षणिक बार भी ये भावना लाएं कि मैं गांव से हूँ, छोटी जगह से हूँ, क्योंकि जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मन और विचार कितने ऊंचे हैं वही आपकी मंजिल को तय करते हैं।
0: जी
1: जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, ऐसे ही जुड़ते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें, सखियों को प्रेरणा देते रहें, और अपना विकास करें, और हमें आपसे इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे। राधा जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको।
2: हेलो बहनों सुनियो, विशेष कार्यक्रम अन्नपूर्णा जिते मैं जिको है तृप्ति भाटिया बात करी राधा कंवर तो। तो देखो अपरे गांव गुवार री बहनों भी कोई सु कम को नहीं, महिला शक्ति पुरुषों सु कम को नहीं, हर क्षेत्र में आगे है, खूब बढ़ रही है। तो हमें अपरा गांव वाला भी बहनों क्यों लारे रहे, जबकि वो ना हर तरह री सुख सुविधा सरकार दे रही है, थो आप री कला ना परखो और वे ना और बढ़िया तरीके से मौजो, ये वास्ते भी सरकार प्रयास कर रही है। आप री कला में जब थे और अधिक पारंगत हो जाओ तो वेरे वास्ते थोनो सरकार जी को है लोन भी देवे, बहुत ही बढ़िया बात है कि थे हुए सो आप रो खुद रो रोजगार भी लगाए सको। तो देखो अपर जो को हुनर है कढ़ाई बुनाई है या कोई तरह रो दूसरो काम है जो इन्हें ही बतायो कि पापड़ बड़ी रो काम है, अचार डालन रो काम है, साबुन बनावन रो काम है, अगरबत्ती रो काम है, अपरे इतरो पहले देखो अदरक प्रिंट रो काम है, टाई डाई रो काम है और हाथ सूज को कसीदा करण रो काम है, एक विशेष प्रकार की सुई सु काम हुई जिके में पिछले साइड धागा इकट्ठा हुई और जब दोनों कैची तो एकदम बारीकी सु काटी हुई जावी तो वेलवेट जेड़ो लगी। और मेरे साथ ही अपरो जिको प्रमुख काम है अपरे राजस्थान रो, राजस्थान में भी जैसलमेर रो रल्ली रो काम जिके मैं आपको छोटा छोटा कपड़ों न मिलाई के रल्ली बनाऊंगी। तो देखो अपोरो जो खुद रो काम है आप वे न और अधिक निखारो और वे तो देश विदेश में आपको अच्छी प्रसिद्धि और ख्याति भी प्राप्त करो है, बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ ख्याति प्रसिद्धि तो मेरे से वे नाम

हुए सो अपरो घर परिवार भी उन्नत हो से बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहनों हणाओं को सुनी बातचीत खूब सारी बातों भी करी, लेकिन गीत संगीत भी जरूरी है। तो बहनों ले हलो गीत संगीत की दुनिया में ये प्यारे से लोकगीत रे साथ।

बहनों सुनियो है प्यारो सो लोग गीत। बहनों हर व्यक्ति अलग अलग हुए, जो ही चौपरा देखो मासूम बच्चा है वो भी अलग अलग हुई, सभी अलग अलग मनोवृत्ति हुई और हर एक व्यक्ति में अलग अलग हुनर भी होया करे। कोई बच्चे नो पढ़न रो शौक हुए, कोई बच्चे नो डांस करनो बढ़िया लगे, कोई बच्चों हुए जिके नो पढ़नो बढ़िया लगे, लिखनो बढ़िया लगे और आसपास होवन वाली घटनाओं नो कोई बहुत ही बढ़िया तरीके से जिको है देख के और उन्हें आपने शब्दों में उभार लेगी। तो इस वास्ते हर व्यक्ति जिको है वो खुद स्पेशल है और वेरी खुदरी एक अलग ही आपरी दुनिया है। तो जिको बच्चा है वोरी भावनाओं नो आपको समझो, वो बैठ के बातचीत करो, यह बहुत ही जरूरी है। और हुए कि है आपको कई बार बच्चोरी एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो तुलना बच्चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर बच्चेरी आपरी अलग खूबी होया करे। तो ये वास्ते वो बच्चों नो आप रे हिसाब से व्यवहार दो, उन्होंने टोकनो रोकनो भी जरूरी है पर एक दूसरे से तुलना मत करो ताकि वो बच्चों राज को भावनाओं है उन्होंने भी ठेस नहीं पहुँचे। तो बहनों आज आपको खूब सारी बातचीत करी पर बातचीत करण रे वास्ते तो आपको बैठा तो समय जो है उरो अपन ध्यान को नहीं रहे, लेकिन घड़ी तो आपके हिसाब से टिक टिक चलती रहे। तो हमें समय हो गयो है बहनों से सीख ले वन लो। तो आप ये वीडियो सीखी तीन आनों दे रहा हूँ सीख करो। राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पणिहारी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है मिड डे न्यूज, और इसी के साथ 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इन समाचारों को हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
1: द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन, फ्रांस दिस इवनिंग। Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NATUG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists, at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent Ankit Kumar, who is joining us from Evian. He will bring us the latest updates on the G7 developments. Ankit? Many G7 economies are facing slower growth and demographic challenges. How would you say the partnership with India would help unlock new opportunities in manufacturing, innovation and services?
2: Yes, Valsa, you rightly pointed out about the shifting global dynamics. See, when we look at the G7 economies today, many are actually grappling with aging populations and acute labor shortages. While partnering with India offers a direct and dynamic solution to them, India brings a massive, young and highly skilled talent pool that is increasingly integrating into global tech and services sector.
1: Right.
2: But the partnership goes far beyond just human capital. If you see newly adopted global tech and services, newly adopted India-France Innovation Roadmap 2030, the G7 bloc no longer views India merely as a vast consumer market. Instead, India has emerged as a critical, trusted partner for building resilient global supply chain and advancing manufacturing. Valsa.
1: Right. And as artificial intelligence becomes central to economic growth, how can India's DPI ecosystem serve as a foundation for responsible and inclusive AI development?
2: Absolutely, Valsa. See, the convergence of digital public infrastructure and artificial intelligence is truly the next frontier of inclusive development. You know, unlike most proprietary platforms, India built its digital architecture like Aadhaar and UPI as a public good, designing it for population scale and inclusion right from day one. When you integrate AI into this framework, India's interoperable DPI provides the diverse, high quality and consent-based data sets that require to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate adversaries to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good. Yes, Valsa.
1: Right, Ankit, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
3: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the VivaTech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
1: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the youth parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said, the government is committed to building next-generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the ministry on a proposed Middle East-India deep water pipeline. In a statement, the ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test NETUG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
4: The Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrup. Earlier, the sale of cough syrup in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrup while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: The Special Investigation Team SIT constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public, and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
5: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
1: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month. Ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
7: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
6: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
7: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किया गया है। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
6: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक पिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
8: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
6: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: UNSC reform would be grossly inadequate.
10: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
5: So waited this long for real and meaningful reforms.
6: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम विविध बम्बई से रिले करेंगे।

तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

जानते हैं, वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो शर्म इसको,

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

अनपन बचपन तो अभी रुझाई नहीं, एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है, बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं
1: जी
0: उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती, देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए,
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें, क्योंकि कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
0: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़े, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़े, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
0: अच्छा लगेगा, खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
1: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आए हैं।
1: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
0: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
0: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
1: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भैया आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों की दुनिया में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
0: ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है, या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी तो बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे,
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरह इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
1: जबकि विषय जो है ना वो

0: हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है। आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की रही है,
1: अक्सर विषय
0: रखा है
1: हो जाती है
0: घरेलू बजट, बाप रे,
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है। पूरे घर में मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे।
0: बिल्कुल सही कहा। इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
1: बिल्कुल। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखी और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: जी

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहर में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी,
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवार को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जैसे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे तो कितनी खुशी होती
1: होती कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को इसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के

अरे गम हूँ शबा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे। बीमारे गम हूँ शबा मुझको दे, दामन से अपने हवा मुझको दे।

देख इधर ऐ हसीना, जून का है महीना, डाल जुल्फों का साया, आ रहा है पसीना।

मैं तेरी चौखट पे मर जाऊंगा, तो ये ना समझना के घर जाऊंगा, मैं तेरी चौखट पे मर जाऊंगा।

0: किधर ऐ हसीना जून का है महीना बाल जुल्फों का साया आ रहा है पसीना।
1: तो आरती महीना तो जून का है
2: जी हाँ पसीना भी बहुत आ रहा है
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
2: पसीने से भी बचा के रखना
1: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
1: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
2: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे,
2: है ना। और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, जरूरी नहीं आपको पता हो।
1: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं वो हम नहीं जान पाते।
2: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता। वो अपनी उड़ान के ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
1: कि
2: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
1: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा
2: किसी को देखे, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
2: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
1: हाँ, ये होना चाहिए, होता नहीं है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को, हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
2: बिल्कुल। और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र दिया और आपने एकदम
1: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
2: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहे। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
2: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना ले तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के

0: पार फिर से खड़ा हो जाता है।
1: जी,
0: और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर अब वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाते हैं ना, कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी,
0: बिल्कुल तो इतने कमजोर बने ही मत, किसी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
1: बिल्कुल
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश,
1: अपनी सफाई देना,
0: अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना, तो सिर्फ ना कहना काफी है। ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो बिल्कुल अलग
1: हो, शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में, और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर
1: बिल्कुल सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है। और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी
1: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: स्वागत है।
1: तो बात क्या चल रही थी?
0: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपने किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और हम जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
0: जी।
1: तो और एक बात और है आती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
0: आपने इंतजार किया,
1: आपने हमारा इंतजार किया,
0: है ना। एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
1: है ना।
0: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
1: 10 लोगों के पास मत
0: जाइए, है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
1: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
0: हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने दिमाग से, बिल्कुल अपने आपसे निर्णय लीजिए।
1: बिल्कुल आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं, तो लोगों को पढ़ना सीखे उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
0: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते
1: हैं तब कैसे होते हैं,
0: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
1: ये आपको ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
0: और इसके जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखे, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही,
0: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है।
1: हाँ।
0: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखे,
1: बोलना समझ चाहिए। के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ,
0: क्योंकि चाटुकारिता में
1: चाटुकारिता में आता है। फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
1: बिल्कुल होती है ना। और तो मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी हो।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आती ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई की आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ,
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से तारीफ करती।

0: तो चलिए आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम
1: एक गाना सुनाए
0: सुनवा दें
1: जी।
0: Thank you.

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉर्पोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग इसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है। और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यवसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुनें।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है चाय की तरह
1: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना
1: तो दूर के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखे तो देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा, कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
1: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा
2: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
1: इतना समय आके तो वो आती है।
2: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास आकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से चीज को बताया है। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
2: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं चेहरे से चांद की तरह से, है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
1: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पर तब से थोड़ा
2: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, और एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
2: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है कि दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कान फोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल,
2: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: अच्छे ही हैं। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, हमारी श्रोता है जो लिखती है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाई और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। देखिए तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
2: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
1: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको वैसे ही लगेंगे, अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे
2: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना, जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था, और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है, परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है, परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है आपस में तनाव।
0: देखिए आपका एक श्रोता का, आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया, उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: कसम लाजवाब हो चौदवी का चांद हो।
1: चौदवी का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थी। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
2: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वह अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
3: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
2: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
3: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि तो लड़की को क्या सजेशन देना चाहिए, दैट कह रहा थी। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, आपकी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहां फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाइट, थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट करते हैं, नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
2: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किया जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।

0: मेरा जी लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे। तो मैंने गलती से कह दिया जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती हैं, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी आप बहुत नीम मैक निकाल रही हैं आप, नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको कहते थे। दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि मैं ना प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ तो, और साउंड्स निकालती हूँ जैसे उनके, तो जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डालो। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है, जूम करके गाड़ी चली थी। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात
0: है, थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुना दिया जाए
1: आदमी का, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है
0: आज पुरानी राहों से, कोई मुझे आवाज नहीं थी
1: वो सब ठीक। हाँ

गम का शिक्षक था साधना दे दर्द में डूबे गीत न दे

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छी लगती थी, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, चीज वॉज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था, कहीं नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो ओहो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती फिल्म।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी की के दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
0: वो फिल्में देख ले आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छे नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहां के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही है और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की आवाज,
1: हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: अभिनय जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो है ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो यूज़ टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा,
1: बिल्कुल
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपके एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना टचडी हुई थी साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूँ यानी तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म, मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसे बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइन, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था, तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी। और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राजी, और वाकई में मैंने देखा राजी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत, और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाते थे।
0: महिला जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार था और म्यूजिक भी, और उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इस फिल्म में। क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट, उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री उसी तरह की वो फिल्म है, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, एक गाना उस फिल्म का सुनाया,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।
2: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।

तुम्हारे महल चौबारे नहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे नहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के

0: होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ उठाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, सर्वानंद सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
2: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं। तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
1: वेद जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
2: अभिजान।
1: अभिजान बंगला आपको
2: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
1: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
2: हाँ, पाथर पंचली देखी थी।
1: अच्छा।
2: उसके बाद भी और 2-3 फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
1: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
2: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वही दरेवा। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वाज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ है जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
1: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
2: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
2: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में
2: काम? नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
2: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर की सनम, तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने और वो फिल्में जब उतर भी जाए सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को।
4: कोई नहीं, फिर भी

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आपके जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो?
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊं, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था। और लता जी मान नहीं रही थी, कल्याण जी आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत वर्षों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये, नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुरीन ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस है। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी है, फिर एक आप है। तो वो इतने ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई आनंद जी भी मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? और बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, बाहर मनाओ तो चलते हैं। तो फिर वो आएंगे। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रेपिटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और कमरे से निकलती नहीं। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोचा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस करी ओ ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊं। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था तो मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: कुछ
1: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया, फिल्म में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार?
0: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ, हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट आते थे, मिले हैं, तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे, तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे, तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी ही नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए, तो नहीं मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई, तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने लगे वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में, हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। और रियली मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और खद कम वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था, तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप वहां मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा, तो बड़ी नाइस ऑफ हिम के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात।

0: सुरेखा जी, फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हटकर के भी आप काम कर रही हैं, और खासतौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्युनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी जिंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर है निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्युनिसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्युनिसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की जिंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी जरूर पढ़ें, कि इसका फायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़े, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेलुलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जैसमी का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

यूवन सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा शरीर और उस शरीर को रोग मुक्त रखना, जो कि सबसे अहम चीज़ होती है और इसमें हमारी मदद कर सकता है योग। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगी आपसे योग भगाए रोग के बारे में। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है और मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र है। योग का समग्र दृष्टिकोण जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य लाता है। योग रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन शैली से संबंधित कई विकारों के प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। छात्रों के लिए योग के महत्व और लाभ को हम अपनी बातचीत में जानेंगे कि किस तरीके से एक युवा के लिए रोग की रोकथाम के लिए योग सहायक हो सकता है। योग सबका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलन। योग मात्र शारीरिक व्यायाम का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की चेतना और अनंत सार्वभौमिक चेतना का मिलन है। योग मन की प्रकृति की खोज की एक विधि है जो अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देती है। योग शरीर, मन और आत्मा के विकास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर आधारित एक प्राचीन कला है। व्यक्तित्व के उच्चतम स्तर के एकीकरण का प्रतीक है। इसमें योग साहित्य में वर्णित विभिन्न अभ्यास और तकनीकें शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से योग कहा गया है। योग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहन शक्ति, धीरज और ऊर्जा के विकास में सहायक होता है। यह मानसिक स्तर पर एकाग्रता, शांति और सुकून, संतोष प्रदान करता है, जिससे आंतरिक और बाहरी सामंजस्य स्थापित होता है। योग की सहायता से आप दैनिक तनाव और उसके दुष्परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। योग शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, मन को शांत करता है। यह शरीर के जोड़ों, स्नायु बंधन और टेंडनों में चिकनाई लाता है। चिकित्सा क्षेत्र में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि योग एकमात्र ऐसा शारीरिक व्यायाम है जो शरीर को संपूर्ण रूप से तरोताजा करता है, क्योंकि यह आंतरिक अंगों और ग्रंथियों की मालिश करता है। यह कई बीमारियों के खतरे को कम करता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन शैली में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। योग संपूर्ण स्वास्थ्य और शारीरिक चुस्ती सुनिश्चित करने का एक उत्तम तरीका है। योग के शारीरिक आधार आसन और स्वास्थ्य, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आप तनाव से मुक्ति पाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वास्तव में यह पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए मानव जाति द्वारा ज्ञात सर्वोत्तम उपायों में से एक है, जिनका इलाज अन्य दवाओं से संभव नहीं होता। पीठ दर्द, गठिया से पीड़ित लोगों को अक्सर ऐसे आसन करने की सलाह दी जाती है जो शरीर के विशिष्ट स्थानों पर मांसपेशियों के व्यायाम पर केंद्रित होते हैं। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य व्यायाम है। सांस के साथ तालमेल बिठाकर की जाने वाले आसनों की श्रृंखला शरीर की हर अंग को लाभ

0: जाती है। योग से शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन और संतुलन बढ़ता है। यह गतिविधियों को करने की क्षमता को बढ़ाता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, आरामदायक नींद देता है। रोजाना योग करने से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। विभिन्न आसन शरीर को लचीला बनाते हैं। इसके अलावा योग उपास्थि और जोड़ों के टूटने से बचाता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, रक्त शर्करा को कम करता है। योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ तनाव, थकान, राहत दिलाने, स्फूर्ति और स्फूर्ति प्रदान करने में सहायक है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मन को शांति देता है। योग की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये इसके सकारात्मक जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य और मन पर समय के साथ दिखने लगते हैं। योग की एक और विशेषता है कि इसके आसनों की विस्तृत श्रृंखला है। अपनी क्षमता और समग्र स्वास्थ्य के अनुसार आप हल्के प्राणायामों और आसनों से लेकर उच्च तीव्रता वाले आसनों तक का चुनाव कर सकते हैं। यह बिना दवाइयों के उपचार का एक कारगर तरीका है। इसके अलावा नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। आपको बस अपने शरीर की क्षमता और संरचना के अनुसार सबसे उपयुक्त आसनों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपको आसनों को करने का सही तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि गलत प्रयास से चोट या मोच आ सकती है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हमें आसन करता है, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा देगा। योग का अभ्यास सुरक्षित है और इसको करने वालों को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। योग की खूबी यह है कि इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। उम्र और शारीरिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। योग व्यक्ति के शारीरिक समन्वय को बढ़ाता है और मुद्रा को बेहतर बनाता है। परिसंचरण तंत्र, पाचन क्रिया, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इन सभी को सक्रिय करता है। योग आपको युवा रखेगा, तरोताजा रखेगा, ऊर्जावान रखेगा, महसूस कराने का बेहतरीन उपाय है। योग मन और शरीर के संयोजन के कारण समग्र स्वास्थ्य का एक आदर्श उदाहरण है। यह पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है और मशहूर हस्तियां, राजनेता, व्यवसायी, जीवन के हर क्षेत्र के लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। योग एक बहुआयामी साधन है जो मन और शरीर को शुद्ध करने, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में अत्यंत उपयोगी है। यह आत्म परिवर्तन और शारीरिक कल्याण का सबसे लोकप्रिय साधन है। लोगों को समझ में आने लगा है कि अगर हमें अपने शरीर के रोगों को दूर भगाना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है योग। हमें अगर डॉक्टर से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है योग। यह आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद असर दिखाना शुरू करता है। आप जैसे स्टार्ट करेंगे आपको इंस्टेंट इतने ज़्यादा असर नहीं दिखेंगे, कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा फील हो रहा है, पर जैसे ही आप 5 डेज 10 डेज 15 डेज कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी हाइड्रेट रखना उतना ही ज़रूरी है जितना योग, मतलब आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी तो आप युवा और तरोताजा फील करेंगे। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म आपका सुरूर का ये गाना हिमेश पेशनिया की आवाज़ में। साथियों, हम बात करना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में, PMEGP। भारत सरकार की एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना की मुख्य विशेषता है कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख तक है तो यह ऋण सीमा निर्धारित करती है। व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 20 लाख रुपए तक की इसकी ऋण सीमा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25% और आरक्षित वर्गों के लिए 35% सब्सिडी। शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए 15% और आरक्षित वर्गों के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान है। लाभार्थी का अंशदान सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष और आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% का सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। इसके लिए पात्र व्यक्तियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से ऊपर और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर की परियोजनाओं के लिए आवेदक का कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है। यह योजना केवल नए उद्यमों की स्थापना के लिए है। स्वयं सहायता समूह, धर्मार्थ ट्रस्ट और सहकारी समितियां भी इसकी पात्र हैं। आप अधिकारी PMEGP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, जाति समुदाय प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और शैक्षिक दस्तावेज जैसे कि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता आपको हो सकती है। आवेदन करने और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधा PMEGP पोर्टल पर जा सकते हैं और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ साथ इसकी तुलना और पात्रता जाँच करने के लिए आप इस पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री रोज क्रीड़ा का यह जो स्टार्ट किया है रोजगार कार्यक्रम का, उन्होंने इस तरीके से किया है कि लोगों को किस ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त हो सके कार्य करने का। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म खोजक की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। विनिर्माण क्षेत्र में प्रोजेक्ट यूनिट स्थापना की मुख्य इसका जो लाभ है उससे मिलेगा। लागत सीमा 25 लाख रुपए तक है और व्यवसाय क्षेत्र में यह 10 लाख रुपए तक है। रियायती दर के तहत योजना में सामान्य वर्ग के लिए 15% और शहरी वर्ग के लिए 25%। 18 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक की लागत का प्रोजेक्ट और परिसंपत्ति व्यवसाय क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और देश का हर इस योजनाओं में सहयोग देना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु स्वयं के उद्योग सेवा उद्यम स्थापना के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने इस योजना को सृजित किया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति स्व सहायता समूह एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकरण संस्था और चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय योजना में अनुदान का लाभ नहीं लिया है, निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक परियोजना लागत तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परियोजना लागत के प्रकरण में हितग्राही का न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको सारी जानकारी पोर्टल पर मिल जाएगी। आप यहां से इसका लाभ उठाकर अपनी योजना को आकार दे सकते हैं। भारत सरकार ने हम सभी देशवासियों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू की है, तो कृपया आप उन पोर्टल को ओपन करें और बहुत सी जो हमारी सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं प्रदान की है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर उन्नति की ओर अग्रसर हो, जिससे हमारा जो भारत है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। साथ
साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: तहरो जरा दिल में है धड़कने, धड़कन में है सदा।
1: समझो जरा क्या मुश्किलें हैं, मेरी मजबूरियां हैं क्या।
0: ठहरो जरा जरा।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म बधाई हो बधाई का ही गाना, जोगन जोगन, प्रीति जी, पिंकी जी और कुणाल जी की आवाज़। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी तापमान जो जून का है वह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। जिस गर्मी से हम जूझ रहे हैं घर के अंदर बैठे, तो बाहर जो हम पशु पक्षी घूम रहे हैं, क्या उन पे क्या बीत रही होगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। परंतु हम उनके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उन्हें जीवन दान मिले, जिससे उनका थोड़ी सी उनको राहत मिले। हम अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में पक्षियों के लिए साफ पानी का जलपात्र भर सकते हैं, जिससे कि वह वहां आकर साफ पानी पीकर अपनी शरीर को एक राहत पहुंचाए। इस भीषण गर्मी में एक राहत की सांस ले। यह छोटा सा कदम चिलचिलाती धूप और गर्मी में नन्हे परिंदों की जान बचा सकता है। जलपात्र रखते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जलपात्र जो है वह मिट्टी का होना चाहिए, जो कि अच्छे होते हैं क्योंकि ये पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं। बर्तन ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए ताकि छोटे पक्षी आसानी से पानी पी सके, डूबने से बच सके। पात्र को किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पर बिल्लियों या अन्य जानवरों का आना खतरा ना हो, जहाँ पे बर्ड्स जो है वो आराम से आ सके। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर ये बिल्ली बिल्ली आकर उन बर्ड्स को प्रॉब्लम क्रिएट करे। और साथ में हो सके तो थोड़ा बहुत दाना भी रख दीजिए। अगर उन्हें खाना खाने की भी ज़रूरत है तो वो दाना खाकर अपना पेट भर सकते हैं। इसमें आप बाजरा रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग। परंतु आपको कुछ मात्रा में यहाँ पे रखना चाहिए पानी पीने के लिए, जिससे कि पंछियों की प्यास बुझ सके। पंछियों की प्यास बुझाने के लिए कई जगह पर तरह तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। इस भीषण गर्मी में आसमान से जो आग बरस रही है, धरती तपने लगी है हर कंठ को तलाश से पानी की, चाहे वह पशु पक्षी हो या फिर हम इंसान। या इंसान का ही कर्तव्य है कि खुद के लिए जतन तो कर ही रहे हैं, अपने आसपास के प्राणियों, खास करके पशु पक्षियों की जो कि बेजुबान हैं, उनके लिए खास इंतज़ाम करें कि कोई दाना पानी के अभाव में अपना जीवन त्याग ना कर सके। मूक पक्षियों के लिए जीव दया का भाव रखते हुए हमें अपने नन्हे बच्चों को भी प्रेरणा देनी होगी कि वही अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करे। उन्हें अगर आप काम के चक्कर में भूल जाते हो, अगर आप बच्चों के सामने एक बार दो बार बता देंगे ना कि आप उनको ऐसा करना

शौक शौक में करेंगे, और उन्हें ये लगेगा कि नहीं ये हमारा काम है, हमें अपने बर्ड्स की रक्षा करनी है, हमें अपने गायों की और या फिर जो भी बाहर पालतू पशु हमारे घूम रहे हैं उनकी अगर हमें रक्षा करनी है तो ये काम, उन्हें खाना देना और उन्हें पानी पिलाना, ये एक आप उनकी जिम्मेवारी डाल दीजिए, वो अपने आप से करेंगे। हाँ, हो सकता है इस भागदौड़ भरी कह सकते हैं दुनिया में आपको टाइम ना मिले, बहुत बार भूल जाते हैं, बहुत से ज़रूरी काम होते हैं जब हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि हम क्या क्या याद रख पाएं। तो आप ऐसा मत कीजिए, ये छोटा सा काम है, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है कि वो ये काम कर सके तो आप उसे सिर्फ बता दीजिए, तो वो खुद ही जाकर जहाँ पर आपका मिट्टी का बर्तन रखा है पानी के लिए, वो खुद ही जाकर उसमें अपने आप से पानी डालाएगा और दाने भी रखाएगा, जिससे कि आपके घर के आंगन में या छत में जहाँ पर भी आपको सूटेबल जगह मिले वहाँ पर आप इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं। बढ़ते तापमान और पानी की कमी के चलते पक्षियों की जो हालत हो रही है उसके बारे में हम सभी जागरूक हैं, हमें उन्हें शीतल जल देना है, ठंडा जल, जिससे कि इन बेजुबान पशु पक्षियों को राहत मिल सके। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ इसी तरह जारी रखेंगे, एक छोटा सा।

Tere bin tere bin de na yo lagda.

साथियों, आप सुन रहे थे आपका शुरू का ये गाना तेरे बिन दिल नहीं लगता। साथियों, मैं बात कर रही हूँ आपसे इस भीषण गर्मी के बारे में जिसमें हमें पशु पक्षियों को दाना पानी देना है, और यह जिम्मेवारी हम अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं जो कि इसे बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारा खान पान होना चाहिए। इन गर्मियों में हम गरिष्ठ भोजन ना लें, हम अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें। सबसे मेन चीज़ है हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना। गर्मियों में हल्का, पानी से भरपूर और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। हाइड्रेशन की खूब पानी पीना चाहिए। दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और मौसमी फल जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, आपको अपने दैनिक आहार में शामिल करना ही चाहिए। ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और आपको इस गर्मी में राहत दिलाता है। आप सभी जानते होंगे कि तरबूज और खरबूजे में काफ़ी हद तक पानी होता है, इससे शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और खीरा जो होता है वो फाइबर और पानी से भरपूर होता है, जो पाचन को ठीक रखता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स का प्राकृतिक स्रोत है जो गर्मी में खोए हुए खनिजों की भरपाई करके ऊर्जा को बढ़ाता है। छाछ और लस्सी गर्मियों में पेट को स्वस्थ और ठंडा रखने के लिए बहुत ही मददगार है, ये प्रोबायोटिक्स है। सत्तू बिहार और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय सत्तू पेट को ठंडा रखता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। गर्मियों के दौरान दही का सेवन पेट के लिए अमृत समान है, यह पाचन शक्ति बढ़ाता है। लौकी, तोरी, टिंडा जैसी हल्की सब्जियाँ खाएँ जिसमें तेल मसाले कम होने चाहिए। पुदीने की चटनी, सिकंजी, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जो कि पेट की गर्मी को कम करता है। तले भुने और मसालेदार और बासी भोजन से दूर रहें, ये पेट की गर्मी और एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। बच्चों को भी कहना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो हैं इन खाने मतलब मसालेदार खाना, चटपटे खाने की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें कम से कम ये खाने का कहें कि आपके लिए यह अभी उचित नहीं है। अगर आप अपने आहार में कुछ बदलाव करके उसे गर्मियों के अनुकूल बनाना चाहते हैं तो यही समय है जब आप अपने शरीर को इन सब चीज़ों से सेट कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत आम बात है, इसलिए विशेषज्ञ हल्का भोजन जिसको बोलते हैं वो लेने की सलाह देते हैं, जैसे हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल और जड़ी बूटियां खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पानी की कमी दूर हो और आपकी त्वचा की भी रक्षा हो सके। अगर आप अपने आहार में कुछ बदलाव करें तो गर्मियों के अनुकूल बना सकते हैं, और बिल्कुल यही सही टाइम है। सर्टिफाइड न्यूट्रिशंस ने बोलते हैं कि किस तरीके से जो चावला है जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, और ये अभी जो मैंने फ्रूट्स बताया आपको जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये आपके शरीर को काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि रिलीफ देंगे। तरबूज के जो बीज होते हैं उसके अंदरूनी हिस्सों को अगर हम भूनकर खाते हैं वो भी हमें ठंडक प्रदान करते हैं। इन्हें सुबह से पहले प्रहर में मिश्रित सलादों के बीच में अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑलिव ऑयल में भी अगर हम इसे लें तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। संतरा गर्मियों का जो मौसमी फल है वो विटामिन सी से भरपूर है, जिसे हमें अच्छे से लेना चाहिए और हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु होता है कि नहीं, बस थोड़ा सा नेग्लिजेंस कर जाते हैं, और वही नेग्लिजेंसी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आपके शरीर को अभी हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों को, घर में बूढ़े और बाहर जो आपके मेल मेंबर्स या फीमेल मेंबर्स जो भी काम करने गए हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में आपको छाछ देनी चाहिए, आपको नींबू पानी, नारियल पानी, और हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको अलर्ट करना चाहिए कि पानी पियो, पानी पियो। हर आधे घंटे में उन्हें बताना चाहिए कि वो एक एक गिलास पानी पिए, जिससे कि उनकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और काफ़ी हद तक आपको इस गर्मी से रिलीफ मिलेगा। हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है का गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, और हम आपसे बात कर रहे थे इन गर्मियों के मौसम में अपने डाइट को बैलेंस करने की, कि किस तरीके से आप ये जो वैकेशन चल रहे हैं उसमें फास्ट फूड और ज़्यादा से ज़्यादा सुगरी फूड कॉकटेल्स इनको अवॉइड करें और अपने बॉडी को वो चीज़ें दें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रख सकें, न्यूट्रिशंस दे सकें। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन कर रहा है कि आप आइसक्रीम नहीं खाएं या कोई फास्ट फूड नहीं खाएं, खा सकते हैं, बट सिर्फ 15 डेज में एक बार या कभी कभार हो गया तो आप उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में शुरू मत कर दीजिए कि हाँ हमें डेली आइसक्रीम खानी ही खानी है, जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़राब हो सकती है। हाँ, आपको ये ज़रूर रखना है कि हमें डेली छाछ पीनी है, हमें डेली नींबू पानी पीना है और नारियल पानी लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, ये आप अपनी बॉडी

लिए जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, बट ऐसी चीजें अवॉइड करें जो काफी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सके। तो हमारा समय हो चला है आपसे विदा लेने का, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी सुन रहे थे युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज के मुख्य कार्यक्रमों में आज सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत ख्याल वागेश्वरी जय जवंती पंडित अजय वोहनकर से।

सुगम संगीत, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम का समय रहेगा राति 8:30 पर। फिल्म संगीत के नगमे आपके लिए लेकर पहुंचेंगे 9:15 और रात्रि 10:30।

ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

उबत टूट रघुपति हुन दोसु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु बोले चितै परसु की ओरा रे सठ सुने।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस का। दोस्तों आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है।
2: नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचे। श्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन में भारत 13वीं बार भागीदारी कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के विकासशील देशों का पक्ष और चिंताएं मजबूती से रखेंगे। श्री मोदी एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेंगे। सत्र का विषय नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना है। सत्र में G7 देशों, भागीदारी देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए बीते 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटी ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रदेश में भी नीट यूजी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है। PIB ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में ई श्रम पोर्टल के लिए श्रमिकों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 72,00,000 से ज्यादा पुरुष श्रमिक हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी प्रदेश में करीब 53% है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता दर्शाती है। पंजीकृत श्रमिक केवल एक क्लिक पर अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकते हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ने वाला एकीकृत मंच है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच आज जयपुर में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
3: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई दे, और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का बंधन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
2: प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के गुना के निवासी थे और छबड़ा के गोगोर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर बालोतरा में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पाटोदी गांव के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर भिवाड़ी में एक औद्योगिक इकाई के निर्माणाधीन हौद की दीवार ढहने से 3 बालकों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर हुआ, जिसमें कल एक बालक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य बालकों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज कोटा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने एनडीए सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे बदलते भारत की तस्वीर बताया।
4: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 703 और 365 12 महीने, यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
2: प्रेस वार्ता में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर मौजूद रहे। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने काजरी सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सूर्या ने कहा कि आज के दौर में सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है और प्रौद्योगिकी के इस समय में गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी पूरी दुनिया के घटनाक्रम की जानकारी रखता है। मीडिया से बातचीत में श्री सूर्या ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कल 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में उन्हें आत्मगौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बताया है। प्रताप जयंती के अवसर पर सलूम्बर जिले के चावंड स्थित प्रताप स्मारक पर कल विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उधर पाली के धानमंडी में कल होने वाले जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महाराणा की राजतिलक स्थली गोगुंदा में भी विशेष आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोगुंदा पहुंचे हैं। वहीं राजसमंद के मचिंद गांव स्थित राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित 2 दिन का मेला आज संपन्न हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में नियमित और सुचारू जलापूर्ति के लिए आज 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से ये नलकूप गजरूप सागर स्थित परिसर में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में इन दिनों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का क्रम भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया।

0: और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चौहार दीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला पशु बीमा, फसल बीमा पॉलिसी जारी करने, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न काम एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। जिले में 19वें रोजगार मेले का आयोजन अजमेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के एसटीआई ऑडिटोरियम में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायेदार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिजेंसी प्लान तैयार करने बाबत कहो। 21 जून न उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता सका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजन पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में भी न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जा रा अहलकारा सागे मीटिंग

0: पार्वती नदी में डूब जावनो चार जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुनारा रहवासी हा और छबड़ा कने गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल है वनसारू आया हा। बालोतरा जिला माए पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस और कार री टक्कर रे कारण चार जना री मौत वेगी। मरण वाला चार ही जना कार माए सवार हा जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे माथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर उ टकरा जावन रे कारण दो जना री मौके मौत वेगी, जबकि एक महिला घनी जख्मी वेगी जिन्ने पाली रा बांगड़ अस्पताल माए भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भीत ढस जावनो तीन बच्चा री मौत वेगी, हर तीन बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री काल ही मौत वेगी ही, जबकि दो बालक आज दम तोड़ तीनों। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही है। वे आज कोटा माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। श्री बंसल केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका इन्हें बदलता भारत री तस्वीर बतायो।
1: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागरी पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याई आज जोधपुर पहुंचा। वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन माए कहो कि मौजूदा दौर माए जानकारियां तेजी पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर माए गांव ढाणी माए बैठा लोग ही आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका सूर्या कहो कि केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा जतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ये मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश माए कहो के महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता थका मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो के मायड़ भूमि री हिफाजत सारू मारी लड़ाई हमेशा याद रखी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर करते वनवाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलूम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम रखियो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर में आई काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनो पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माई आज खास आयोजन रखियो जा रियो है। इन माई शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल मा थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो 2 दिन रो मेलो आज पूरो फेंक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य माए आवता 4-5 दिन तय प्रदेश के हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है। इनु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। ई बीचे आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौती माए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन सागे अंधड़ चालन री संभावना है। पांचना बंधारो पानी नेहरा माए छोड़वारी मांग करता थका गैर कमांड हल्का रा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज धरनो दे रिया है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन न जाम कर दीनी किनू अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू में है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश से शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिजेंसी प्लान तैयार करने बाबत कहो। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता था का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजन पना 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में प्यार न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। इसके प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जैसमय का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आयोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
1: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
2: वो कैसे?
1: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
3: ये किसका नंबर है भाई?
1: किसान कॉल सेंटर का, जहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
4: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा?
1: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
3: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
1: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
5: सर
1: 16 आने सर।
6: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
7: हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
8: किस बात की चिंता है भाभी?
7: खेती की ही चिंता है भैया, मुन्नी के बापू जिंदा होते तो सब संभाल लेते।
8: हाँ, ठीक कहती हो तुम।
7: अब हम अकेले क्या करें भैया?
8: भाभी चिंता मत करो, अब भी एक सच्चा मददगार हम किसानों के साथ है।
7: अरे भैया बताओ ना कौन?
8: भाभी तुम किसान कॉल सेंटर फोन मिलाओ, वहाँ से तुम्हें उन्नत खेती के लिए हर सलाह मिलेगी।
7: जैसे?
8: जैसे बीज, खाद या कीटनाशक के इस्तेमाल और मौसम के मिजाज के बारे में पूछो और जानो।
7: सच कहते हो भैया?
8: हाँ, वहाँ से तुम्हें कृषि विशेषज्ञों की राय मिलेगी एकदम मुफ्त, और भाभी वहाँ फोन करने के पैसे भी नहीं लगते।
7: वहाँ फोन कब करें भैया?
8: हफ्ते के 7 दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, कभी भी मोबाइल से या दूसरे फोन से, और वहाँ तुम अपनी ही भाषा में बात कर सकती हो।
7: पर भैया,
8: सोचो मत भाभी, किसान कॉल सेंटर तुरंत फोन मिलाओ।
9: कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर का मुफ्त नंबर 1800-1801551।

तो बैठा सदा सुनो वाला भाई नौ सरे भाई रात सुनो नहीं है घना घना स्वागत। देखो बैठो के हवा तेज बाज रहे गर्मी भी है और ये रे साथ ही साथ रहे मैंने अपना बात करो तो खेतों का काम भी है और खेतों का काम तो देखो करना ही पड़ता है। खेतों का काम का साथ ये सब आगे फसल ले पाओ तैयारी भी कैसे और साथ ही साथ में हम एक मोटा मोटी बात करो तो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग और खाद्य

ज्यादा द्वारा खेत बचाओ अभियान चल रहा है। ये महीना आप अपनी जो खेत है ये बचाओ नहीं बात करें, यानी कि आप जो को भी परंपरागत जो अपना तरीका है खेती का पुराना और आज जो को विज्ञान है ये दो तालमेल करता हुआ को का बढ़िया तरीके से मदार स्वास्थ्य उत्तम है, परंपरागत वनस्पति है वहाँ पर ही सुरक्षित रहे संरक्षित रहे, तो ऐसी चीज़ों सब आप ये समय में ना देखना है। तो सबसे मोटी बात अगर आप देखो तो समय समय आते ही और विभागों की तरफ से हर गौर स्तर मास है चल से कार्यक्रम ये में आप और किसान भाई लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेंगे, यानी कि वे में शामिल होना और वे में जो वैज्ञानिक तरीका है वो सुनो अपन रू रू होना क्यों नो मतलब है। तरीका तो पुराना परंपरागत ही है लेकिन आज के समय में ये महत्व कितु है और क्यों है, क्योंकि देखो कि हम आप देखो तो आज के समय जो की है कि हर चीज में अंधाधुंध दौड़ रो है, कौकरी कौकर ज्यादा चीज आप हासिल करो आर्थिक उन्नति देखी करो, वे साथ साथ कई चीजों अपना जो किसान भाई है वो भूल गया या कई और द्वारा ये हो गया गलत, यानी कि मिट्टी रे में ज्यादा वो तत्व आप डाल दिया जिसके से फसल बेगी है, तो वेरा कारण मोटा मोटी अगर देखे तो रासायनिक कारण है अपनी मृदा जो को है खेत वो मिट्टी है वो कोई चीज इज्जत हती या नहीं हती, लेकिन लोगों एक दिन कौन क्यों है फलौनी चीज खेत में नौकी फसल बढ़िया आई आपो भी नौकी मतलब देखा से कीरो कम के उस पर मृदा है वो स्वास्थ्य है वो खराब है वीर बाद वीर जो फसल निकले वो भी आम सामान्य जो तक पहुंची वो स्वास्थ्य वास्ते भी खराब थी, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थों से ज्यादा उगाई गई या जल्दी उगाई गई या जो को भी वीरो तरीको रहे हो, तो ये वास्ते आज जो समय है ये नहीं कि जय मोटा मोटी अगर देखी जाए तो आप अपने क्षेत्र में अपनी मृदा है वो स्वास्थ्य उत्तम रखो। स्वास्थ्य उत्तम रखने वास्ते सबसे मोटो ये चीज है कि अपना जो भी ये विषय विशेषज्ञ है कृषि प्रेक्षक है और विभागीय तौर माथे जो कोई बात हो कोई भी अपने ये बारे में बताओ से वो एक ही कहना है कि अपने मृदा है वे रमीनो परंपरागत खाद बीज वो तरीका अपनाओ चूंकि सुखी मिट्टी जो स्वास्थ्य उत्तम है बीजे में ये समय में ना हो सके वैसे तो खनुषि को जांच करा लिए फिर भी मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी की जांच कराओ सुखी है कि मिट्टी में जो आप कया तत्व की कमी है या कया तत्व आप बराबर है या ज्यादा है उम्र भी आप ठापर से उम्र अनुकूल आप खेती करो ताकि आप किसान भाई जो है बीजी दौड़ में नहीं जाए पूरी मिट्टी में की है तत्व और उम्र अनुसार कई फसल बढ़िया हो सके उम्र माथे वो ज्यादा ध्यान दे। तो आपो की एक खाद लाया बाजार से रासायनिक खाद लाया फलौनी लाया ओ लाया ओ लाया और वो ना आपो जो नौकी आपो नौकी ना ये तरीको अपन कौन करना हमें जो कुछ तरीको है वो वैज्ञानिक तरीको है चूंकि वो है परंपरागत लेकिन ईरो एक बढ़िया समृद्ध रूप है। जो बात करें तो बीज बीज उपचार बीज उपचार मतलब है पहले पुराने समय में बीज उपचार करता या नहीं करता जो कोई होशियार हो तो वो थोड़ा विशेष बीजों आप टाड़ा टाड़ी कर तो बाकी सामान्य गया बाजार से बीज लाया बीज खेत में नौकी और खेत फसल हुई जितनी हुई बढ़िया हुई खराब हुई कम हुई ज्यादा हुई वो जब चलते थे, लेकिन आज उसमें अलग तरीके हो गए बीज भी बढ़िया किस्म कॉकर लो केसू लो और लेती टेप की बात पर ध्यान रखो ये सब चीजें छोटे छोटे है ये सुन आप खेत जुड़े मृदा जुड़ी है किसान भाग्य जुड़ी हुआ है किसान रो आर्थिक संपन्नता जुड़ी है, तो केवल मतलब है कि जो को सरकारी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया किसी को के एक योजना या किसी को या जो को प्रोग्राम है या कार्यक्रम है खेत बचाओ तो ये एक चीज यही है पुराने है मायतों वाले है ये वैज्ञानिक तरीको अपन करना है और ये में अपन शामिल होना है। तो मेरा देखो बातचीत तो आपको करता रहो आप पहले एक बढ़िया सुनो गीत तो आओ सुनो एक गीत

चंद्र धर राजा राजा जी रे सारे पिता मारो।

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਰਸਾ ਲੋ ਦੇ ਜੁਗੋ ਕਰੇ।

तो भाई देखो, आप बहुत ही बढ़िया सुने हुए गीत बरसाड़ो बरसाड़ो में आयो कहने के ये माथे तो कई अपार गीत गायड़ा है। और मेरे वास्ते तो अपर ये जो लोक परंपराओं में है वो किसान है, किसानोरा जो ढबरिया है, ढूले ढूली जो बिया है, डेडे डेडी डेडर की जो बिया है, ये तरीके का कई चीज़ें करें, क्योंकि मे बिना तो कहीं को नहीं, मेहमान कद आवे लेकिन फिर भी लोग उम्मीद लगाया करें। तो बरसाड़ो अपर भाईरा बरसाड़ो का इंतजार कर रहा है और बरसाड़े माथे सब खेत है, कई किसान और तो खेल सब पूरा बरसात माथे, क्योंकि अपर एक मोटा मोटी देखो तो ब्रानी खेती बहुत मोटे स्तर माथे है कई। और अपन बात ऐज कर रहा था कि खेत बचाओ और ब्रानी खेती है, तो ब्रानी खेती रे मैंने जो भी अपनी फसल उगी वो पूरी पूरी आप कह सको है कि एकदम बिना कोई प्रकार की रासायनिक शुद्ध बढ़िया परंपरागत फसल हो गई। और उम्र तो देखो कि जो हमारा खड़ी ने लीजा है तो ये फसल का जो भाव मिले ये तो कोई बाजार में दे सको कि कोई गिनती को जो बाजार से अच्छी जिलों 100 रुपये तो ये 80 से 250 रुपया भाव हो जाए, क्योंकि वो चीज़ की गुणता है, वो चीज़ में लोगों का विश्वास है, वो में आप और एक परंपरा जरूरी है। तो वो कोई प्रकार की खाद या कोई प्रकार की कोई चीज़ को डाले और बरसात खेत को पानी है उन्हें संचय करे वो माध्यम से जुड़े दो पूर्व गुरु निचोड़ सो, चाहे वो गेहूँ है, चाहे सरसों है, चाहे चनो है, उनके साथ धोरों माथा पर खेती है, बाजरी है, गुआर है, बीजा है, ये भी बरसात के हिसाब से जुड़े, बरसात बढ़िया तो सब बढ़िया, बरसात नहीं तो बस खेत वास्ते किसानों वास्ते। लेकिन आज के समय में अगर आप बात करो तो कई तरीका अपनाया गया है और उम्र में किसान भाई जो को है वो समय समय माथे लाभ भी ले सके। तो ये समय में खेत और मैंने आपको की काम करो ये वास्ते अगर देखे जाओ तो सबसे मोटी बात तो है कि सरकार जितने भी योजना है किसानों और वास्ते उन घने सी लाभदायक है, उन घनों सी को माथे अनुभव मिले। हमें जो नहरी क्षेत्र में है या जो ट्यूबवेल करा लिए हो या पौंड कोई बना लिए है, पौंड निर्माण करा लिए, तो वो कहने पौड़ी भी कह सको के कोई प्रकार की कमी को हमें वो पौड़ी जो कोकर भेड़ो कर रखना है, संचय करना है, पौंड निर्माण होगी तो बरसाती पौड़ी भेड़ो करना है, नहर अगर पौड़ी है तो वे पौड़ी न जो आप बारी आई, क्योंकि बारी अलावा तो पौड़ी मिले को, तो वे पौड़ी टाइम आप खेत में पौड़ी की जरूरत है या नहीं है, तो वे पौड़ी ने अगर पौड़ी खेत में जरूरत को अपनी फसल न पौड़ी कौन बहनो या बागवानी ने पौड़ी कौन बहनो आप पौड़ी पाड़ो है और वो बारी आप पाछी आएगी तो वे पौड़ी में आप संचय कर लो, बिल्लो कर लो, इकट्ठो कर लो, उसे वास्ते डिग्गी निर्माण, तो डिग्गी निर्माण माथे भी अनुदान है, बरसाती पौड़ी भेड़ो करने वास्ते पौंड निर्माण है तो उसे माथे भी सरकार तरफ से अनुदान। तो कहने मतलब है कि यह तरीका जो है बहुत

बढ़िया है और हर रोज को समय है, ये समय में आपको ये चीजें पूरी पूरी जानकारी ले सको। खेत बचा हुआ थे अपराध को भी जिता सरकार प्रतिनिधि कृषि संबंधी वो गाँव गाँव में आ रहा है तो उस आपको ये चीज को लाभ ले सको। तो भाई लोग बातचीत जारी जैसे और एक सुनो बहुत ही बढ़िया गीत।

0: तो देखो भैरव, आप बहुत ही बढ़िया गीत सुने भैरव। मोरिया मोरिया और अपारी जो को लोक संस्कृति है वे रहे मोरियर बहुत बढ़िया बखोन की मोरियो मेनो हिला करना रो ओ पक्षी है जीव है जिक्र वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर माते तो महत्व है ही है गौर मीनो सबसे ज्यादा ये महत्व है। बहुत ही कह सकूँ कि फूट रो हुए और ये माथे यदि मोर घटाओ न देखे मोयो आप रे आवाज लगाने चालू कर दे मियाओ मियाओ मतलब मीनो आह्वान करे एड़ो अपर गौर मीनो लोगों एक धारणा है। तो देखो कि अपन बातचीत तो चले गीत बीजा भी चले फिर साथ साथ में अपन सबसे मोटी बात है कि हमें अपन खेतर में ना क्योंकि हमें धीरे धीरे औंधी थमणी चालू हो रही है और कहीं की कह रहे आड़ंग रो भी आश्रो लागे पड़ो तो ये वक्त रे मीनो अपर जो को भी कृषि का यंत्र है जो को ना आपको हणो ये गर्मी और मीनो ढक रखा था वो ना धीरे धीरे जो को भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन ए थोड़ो सी औंधड़ बंद हो रो पछली ना पाछा संभाल साल संभाल करूँ क्योंकि ये बात है। अच्छा हमें आगे जो अपनी फसल उगवाई है वो अपन कौन लेना है या ट्रैक्टर कोई ला रहे बीज आड़ू है जो है तो ये ना आप हरा थका तैयार कर सो साफ सफाई कर सो ये मैंने तेल पानी दिया गया रहे नहीं तो ग्रीसिंग भी करनी पड़ से तो अंदर बंद हो जाए तो एक खेतरा कौम है धीरे धीरे मैंने अभी हटाऊ तो ये और मैंने कई बार जीव जो तो बढ़ बैठ जावे तो ये भी अपन ध्यान रखना है। तो ऐसे समय हमें खेत रहे मैं तैयारी में लगना है तो भाई पर बात तो जारी राखत लेकिन हमें समय अपनो दे रही इजाजत क्या हमें सीखो लिए जावे तो भाई कसो राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर, प्रस्तुत है हयाल वागेश्वरी।

Tara patu bina rena, tara patu.

ಡರಸ ಬಿನಾಯ್ ಚರಪತ್ತು ಹೋದೆ ನಾರಾಯಣ.

Sagada ma de ga ma sagada ga ma.

Oh, damn it, I did not get it.

तुम्हें सन लागे लगा।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इन्हीं गीतों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर नहीं का गोल्डन सिटी चैनल है। FM 88.8 MHz रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान

0: मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए।
1: कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से

इन्हीं गीतों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चल रहा है 91.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार हैं सीमा मिश्रा और लेकर आए हैं कुर्गा एल्बम की।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सीमा मिश्रा के गाए इन्हीं गीतों के साथ राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन जुबली चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्याम गजल। श्याम गजल में पहली गजल हम आपके लिए लेकर आए हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

खामोशी क्या चीज है और वो समझी नहीं खामोशी।

तुझे नजर ना लगे किसी की जिए हजारों साल, एक तू ही धन्यवाद।

0: देखी क्या मेरे को?
1: अरे नहीं देखा।
0: अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं?
1: हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा।
0: तू किस खुशी में खुश हो रहा?
1: मैं क्यों खुश होऊंगा?
0: क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं।
1: मैं ऐसा क्यों करेगा?
0: मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ, इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है।
1: भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा।
0: चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को दो पल की खुशी तो मिलती ना।
1: आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था।
0: दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बच जाता, तू मामा बन सकता था।
1: तेरे

Look at that!

इन्हीं गीतों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम भी समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said, this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development.